0: हर समय तुहाडे संग तुहाडा अपना एहे रेडियो सुरसंगम।
1: ओहो, आज फेर नी लोड मिलिया।
2: की होया?
1: बस पूछना, इंश्योरेंस कन्फर्मेशन नी आई टाइम ते, ते हुन फेर एक दिन वेट करनी पैनी है, ते बच्चियां नू फेर नी मिल होना दो दिन।
2: ओहो, रह गए ना फेर पिछे। मैं सुनिया है सोनिक इंश्योरेंस दे मानस पहुजा अते रमन वड़ैच ते उना दी टीम इंश्योरेंस कन्फर्मेशन बहुत जल्दी प्रोवाइड करवा दिंदी है, ते ओ ता पोर्टल भी सेट कर दिंदे ने ताकि तुसी आप ही कन्फर्मेशन दे सको, बशर्ते तुहाडी इंश्योरेंस एक्टिव है। तुसी आज ही उना नू फोन करो ते जल्दी तो जल्दी गाल करके कोई हल लब्बो ताकि अगली बारी तुसी कार टाइम ते आ सको ते बच्चा नाल टाइम भी स्पेंड कर सको। फोन नंबर है मानस पहुजा 5878321208 या रमन वड़ैच 7807530001। सोनिक इंश्योरेंस।
3: मर्सिडीज कार खरीदना चाहते हो? हुण कैनेडा दे विच तुहाडे सुपने सच होण दा समा आ गया।
4: कैनेडा दे विच मर्सिडीज दी सब तो वड्डी डीलरशिप कैलगरी एयरपोर्ट दे नेड़े मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल पहुंचो ते सिद्धी गलबात करो गौरव शर्मा दे नाल। पंजाबी, हिंदी, उर्दू या फिर अंग्रेजी दे विच गलबात करो, गौरव शर्मा तुहानू देणगे वधिया सलाह ते वधिया डील्स। मर्सिडीज बेंस कंट्री हिल्स 70 दे करीब कारां दी डिस्प्ले वाला वड्डा शोरूम। सब दा माण, सब दी चाहत, अपनी सुपनमई कार खरीदन लई गौरव शर्मा नू शोरूम च जाके मिलो या फिर फोन कर लो 4039036757।
3: मर्सिडीज बेंज कंट्री हिल्स।
5: की तुहाडे परिवार विच किसे नू होम केयर दी जरूरत है? अपने ही घर अंदर अपनी बोली विच होम केयर प्राप्त करन लई YYC होम केयर वालियां दा अगला संदेश सुनो।
6: सति श्री अकाल जी, मेरा नाम वीरपाल कौर टाटा, मैं फाउंडर हां YYC होम केयर सर्विसेज दी एंड मैं पैरामेडिका बाय प्रोफेशन। एट YYC होम केयर सर्विसेज असी घरां दे विच होम केयर प्रोवाइड करदे आं, जिहदे विच असी सरकार नूं सिद्धा बिल करदे आं अंडर क्लाइंट डायरेक्टेड होम केयर इनवाइसी प्रोग्राम। इहदे लई गौरमेंट फंडिंग हैगी आ। उहदे लई तुहानूं कोई भी क्वेश्चन होण तुसी सानूं फोन कर सकदे आं 8257600983 ते। थैंक यू।
2: कैनेडा विच रहंदिया इंश्योरेंस दी बहुत अहमियत है। किसी भी तरह दी इंश्योरेंस लई पंजाब इंश्योरेंस दे रीजनल मैनेजर हरपिंदर सिद्धू नाल आज ही संपर्क करो। सुपर वीजा, लाइफ इंश्योरेंस, मॉर्गेज इंश्योरेंस, RESP दिया वधिया सेवावां लई पिछले लंबे अरसे तो कैलगरी विच जानिया पहचानिया नाम है हरपिंदर सिद्धू। ए इंश्योरेंस लई नामवर कंपनियां नाल काम करदे हन। होर जानकारी लई पंजाब इंश्योरेंस दे हरपिंदर सिद्धू नाल 403-404-3500 ते संपर्क करो।
4: अपने घर दा दूजा नाम आ सुकून ते कैनेडा च घर खरीदना एक वड्डी चुनौती।
5: घर खरीदण तो पहला इत्मीनान नाल किसी प्रोफेशनल दी सलाह जरूर लाओ।
4: वधिया घर खरीदना, पैसे बचाने ने, सिरदर्दी तो भी बचना, ते याद कर लो एक नाम मनदीप सिंह गिल।
5: सिर्फ घर खरीदण लई ही नहीं बल्कि वेचना भी होवे ता बिल्कुल सही सलाह देणगे मनदीप सिंह गिल।
4: घर खरीदण ते वेचण लई मैक्सवेल सेंट्रल दे नाल काम करदे मनदीप सिंह गिल देणगे वधिया सलाह ते प्रोफेशनल सर्विस।
5: भरोसेयोग रियल्टर मनदीप सिंह गिल दा नंबर नोट करो 403-617-1868।
4: जेकर कर रहे हो घर खरीदण ते वेचण दी प्लानिंग, मनदीप सिंह गिल नू कॉल कर लो जां विजिट करो उहनां दी वेबसाइट mandeep.realtor।
5: मैक्सवेल सेंट्रल दे रियल्टर मनदीप सिंह गिल 4036171868।
2: कैलगरी वासियों, कि तुसी लंबी लाइना अते डॉक्टर दिया वेटिंग लिस्ट तो परेशान हो, खुद फिकर छड्डो क्योंकि तुहाडे अपने शहर विच आ गया है सेहत दा असली पहरेदार ओएसिस स्माइल मेडिकल। सनरिज मॉल दे नाल सुपर स्टोर वाले प्लाजा विच स्थित इस क्लिनिक विच तुहाडी अपनी भाषा बोलन वाले मेल अते फीमेल डॉक्टर्स हर कदम ते तुहाडे नाल हन, चाहे गल होवे बच्चियां दी या फिर बुजुर्गां दी। इत्थे सारियां लई सुविधावां मौजूद हन। अपॉइंटमेंट नहीं बनी, कोई चक्कर ही नहीं, सिद्धे चले आओ। इत्थे वॉक इन विच खुला स्वागत है, नवे पेशेंट्स दा वी निग्गा वेलकम। फैमिली केयर तो लेके मेडिकल चेकअप अते क्रोनिक बीमारियां दे इलाज तक सब कुछ इक्को छत हेठ। असी हफ्ते दे 6 दिन खुले आ ते ओ वी देर शाम तक। ता देर किस गल दी, अज ही डायल करो 5876174696 587-617-4696। ओएसिस स्माइल मेडिकल, तुहाडी सेहत साडी जिम्मेवारी। 5876174696।
7: सोने घर दी निशानी हुंदी है शानदार फ्लोरिंग जिथे कदम रखदियां ही तुहाडे मेहमान फ्लोरिंग कंपनी दा पता पुछन लग जान ते ओ पता है कैलगरी कारपेट एम्पायर जिथे तुसी ले सकदे हो अपनी पसंद दी फ्लोरिंग दा समान फ्लोरिंग घर दा होवे या होवे कमर्शियल नवा लवाना होवे या होवे रेनोवेशन दा प्लान कारपेट हार्डवुड लेमिनेट टाइल ते होर शानदार फ्लोरिंग दे डिजाइनां नाल भरिया है इन्हां दा शोरूम अज ही इन्हां दे शोरूम ते पुज्जो 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी कैलगरी कारपेट एम्पायर फोन नंबर 403-510-1515 2935 19th Street नॉर्थ ईस्ट कैलगरी
8: ग्रोसरी खरीदने लई हमेशा याद रखो कैलगरी दा मशहूर सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
9: ताजियां सब्जियां फल फ्रूट दालां मसाले ते बर्तना तो इलावा घरां दी वरतों दा हर समान मिलेगा कीमतां कट ते क्वालिटी A1
8: जानिया पछानिया नाम है सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर
9: तुहाडी ग्रोसरी दियां लोड़ां पूरियां करन लई सांझा पंजाब दियां कैलगरी दे विच हन 6 लोकेशनां हफ्ते दे 7 दिन सवेरे 9 बजे तो लैके शाम 9 बजे तक
8: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर पहली लोकेशन 331-3690 वेस्ट विंड ड्राइव
9: दूजी लोकेशन 117-7770 एवेन्यू
8: तीजी लोकेशन 570-6520 फाल्कनरिज बुलेवार्ड
9: चौथी लोकेशन 606 सिटी स्केप स्क्योर
8: पांचवी लोकेशन 3150-235 रेड एम्बर्स वे
9: छेवी लोकेशन 400-45 कैरिंगटन बुलेवार्ड नॉर्थ वेस्ट कैलगरी
8: सांझा पंजाब ग्रोसरी स्टोर दियां 6 लोकेशनां दा सांझा फोन नंबर
9: 403-835 बाय बाय
5: रेडियो सुरसंगम 94.7 FM सुन रहे सारे श्रोतियां नूं कुलदीप सिंह वलों सत श्री अकाल जी अज दिन वीरवार जून महीने की 25 तारीख सन 2026 हुण तो लैके 5 बजे तक मेरा ते आप जी का साथ रहेगा अज दे इस प्रोग्राम विच असीं खबरां ते चर्चा करांगे मौसम की भी गल करांगे 5 बजे सवलीन कौर जसर प्रोग्राम पेश करनगे 8 बजे एक विशेष प्रोग्राम होगा ते 9 बजे पंजाब तों जतिंदर पन्नू जी नाल बहुत सारे मुद्दों ते विचार लै जाणगे जतिंदर पन्नू जी हुणां नाल प्रोग्राम सोमवार तों शुक्रवार तक हुंदा जी ये साडे अज दे बाकी रहिंदे प्रोग्राम ते उहनां दा वेरवा अज दे इस प्रोग्राम विच सब तों पहलां मौसम की गल करदे हां जी मौसम किस वक्त किस तरह का हो जाए ये अंदाजा नहीं कैनेडा दे विच खास तौर पर लेकिन पिछले कुछ दिनों तो सानू ना ज़्यादा गर्मी ते ना ज़्यादा ठंड वाला मौसम